आता है मेला दिलों का आता है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज का इवेंट है उसका मेला तो ज़रूर लगा है। और आज सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, आज डिस्क पार्क में बहुत ही प्यारा फॉलिंग फॉर लोकल चल रहा है। यहाँ 180 से ज़्यादा लोकल बिजनेस के अनोखे प्रोडक्ट्स, बच्चों के लिए मज़ेदार गेम्स एंड बहुत सारी चीज़ें, उसमें लजीज खाना खाना ना भूलिएगा। तो आपका इंतज़ार ये कर रहा है। लोकल शॉपर्स के लिए, आज के लिए तो ये काफ़ी बेहतरीन जगह है। मतलब यहाँ पे लगा है खुशियों का मेला, आप ये कह सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो 9 अपन निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला गाना। कैसी चल रही है आपकी आज की शाम, सुनते रहिएगा रेडियो 9 पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स एंड डरम के खाने पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स एंड फूड लवर्स के लिए। डरम में अमेरिकन टोबैको कैंपस से एक मुंह में पानी ला देने वाली खबर है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद फुल स्टीम ब्रेवरी ने अपना बेहद खूबसूरत जो है प्लेस, वो नई लोकेशन खोल दी है। यहाँ एक नया शानदार टैप रूम, उसके बाद जो रहेगा रेस्टोरेंट और नया जो फूड का मेन्यू शुरू गया है वो काफ़ी अलग लेवल का है एंड काफ़ी यूनिक है, जो वीकेंड में एंजॉय करने के लिए तो बेहतरीन जगह बताई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लाइक एंजॉय तो करना चाहिए, एंजॉय करना सबका हक है और वो करना ही चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

ये गाना गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जी हाँ, गाड़ी का नाम सुनते ही गाड़ियों का नया नियम नॉर्थ कैरोलिना एनसी के लिए लागू कर दिया है। तो क्या है गाड़ियों का नया नियम? एक बेहद काम की जानकारी, नॉर्थ कैरोलिना में डीएमवी, दैट इज डिवीजन ऑफ मोटर व्हीकल, का नया नियम लागू हो गया है। अब आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस प्लेट पर चिपकाने वाले कागजी स्टिकर नहीं मिलेंगे, बल्कि ये पूरा प्रोसेस डिजिटल और हाईटेक हो चुका है। तो इस नए बदलाव को नोट कर रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। तो इन शॉर्ट, नॉर्थ कैरोलिना का नया नियम गाड़ियों के लिए यह है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब डिजिटल होने वाला है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की खबरें आपको सुनाने का। तो हर साल की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर, दैट इज अजय देवगन, और उसकी फैमिली का राज देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जी हाँ, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन कल रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर आते ही इसने तहलका मचा दिया है। तहलका क्या क्या मचा दिया है, क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है, दर्शकों को ये फिल्म कैसी लग रही है, सब कुछ बताऊंगा। यार थोड़ा सब्र कर लो, पहले सुनते हैं अच्छा ये गाना और उसके बाद विजय सालगांवकर और मतलब दृश्यम 3 के कैसे रिव्यू है, ये डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू,

0: ये मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

वेल एंजॉय किया आपने गाना. अब बात करते हैं दृश्यम द कंक्लूजन, दैट इज दृश्यम 3 की. तो रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ रुपए की छप्पर फाड़ कमाई कर डाली है. ये अजय देवगन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है. लोग कह रहे हैं कि फिल्म का इंटरवल और क्लाइमेक्स इतने सारे ट्विस्ट और टर्न से भरा है जो आपके होश उड़ा देगा. इस बार तब्बू और अजय देवगन के साथ विलेन के रोल में जयदीप अलावत ने जो समा बांधा है उसे देखकर जनता थिएटर में ताली बजाने पर मजबूर हो गई है. टिकट बुकिंग तो यार पहले कर लीजिए क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ने वाली है. यार दृश्यम सीरीज है इतनी ऐसी कि मैं आपको क्या बताऊँ. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट से. एंजॉय करते हैं अगला एक गाना. बने रहेगा रेडियो नायरा पर. पक्का देसी पक्का लोकल.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स और अभिषेक बच्चन का मजेदार बयान ऐश्वर्या और डैड को मनाओ। जी हाँ, अभिषेक बच्चन इस दिनों अपने मजेदार बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। जब उनसे पूछा गया कि आइकॉनिक गाने का कजरारे का वर्जन 2.0 बनना चाहिए, तो जूनियर बच्चन ने यह कहा, हंसते हुए कहा, भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, पहले ऐश्वर्या और मेरे डैड को जाकर इसके लिए मनाओ। अब देखना ये है कि क्या ये तिकड़ी दोबारा नज़र आएगी और थिरकते हुए, क्योंकि कजरारे ये जो गाना था ये बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल और कितने डिकड तक ये गाना चला था उस टाइम में, अभी भी ये गाना चल ही रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये 2.0 कजरारे आएगा और अलीशा चिनॉय ही ये गाना गाएगी? अगर ये गाते हैं और इसके बाद ये ट्रियो जो है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ आते हैं तो मजा ही आ जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्भर नाइट्स, रेडियो नायरा पर।

आपने इंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स एंड नुसरत भरूचा के साथ। बाली में हुआ बड़ा हादसा, जी हाँ, एक फिक्रमंद कर देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, जो नुसरत इंडोनेशिया के बाली में वैकेशन मना रही थी, जहाँ उनका एक गंभीर स्वरूप से जो है वो हादसा हो गया है और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। खबर है कि उनको मुंबई वापस लाया गया है और उसके बाद उनकी एक सर्जरी जो है वो होने वाली है। मतलब यार यू नो ऐसी चीज़ है। ठीक है, एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल, और हाँ बने रहिए।

ऋतिक रोशन और सबा आजाद के प्यार के 5 साल और एक रोमांटिक खबर। बॉलीवुड के ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने अपने प्यार के 5 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर सबा के साथ बहुत अच्छी पिक्स शेयर की है, जिसे देखकर फैंस और बॉलीवुड जो अपना है प्यार किस तरह से लुटाते हैं ये समझ में आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जादू शक्तियाँ वापस आ गई है। अब मैं पोर बेटा का नहीं, अब मैं काफ़ी मैं बड़ा हो गया हूँ। आप सुन रहे रेडियो नायरा पंडित नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का जैसे पक्का।

कभी कभी ना ऐसा होता है कि यार बहुत चीजें हम करते रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं और जब फुर्सत मिलती है तो फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, है ना, ऐसा होता है इन जनरल। लेकिन कभी कभी खुद से मिलना भी जरूरी है। आप क्या हो, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सब जानने के लिए आपको अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। खुद से भी मिल लिया करो, वीकेंड मनाते हो ना, लाइक ब्रेक लेते हो, वीकेंड मनाते हो, किस चीज़ के लिए, रिफ्रेश लगने के लिए। तो कभी कभी खुद को भी रिफ्रेश करना चाहिए, अपनी पसंद का चॉकलेट खाना चाहिए, अपनी पसंद का खाना खाना चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए, ड्राइव पे जाना चाहिए, तो ये चीज़ करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। खुद में जितना आप खुद से लाइक खुद को जितना अहमियत दोगे देनी पड़ेगी। आप सुन रहे हैं रेडियो दायरा, अपडेट बता रहे हैं।

आप सुन रहे रेडियो नायरा पंडितवना नाइट्स। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको ऐप मिलेगा। ऐप मिलने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक एंड बस शर्त इतनी सी है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए एंड 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स शो पर, मिटाऊंगा आपका स्ट्रेस, बनाऊंगा आपके मूड को रिफ्रेश। फिलहाल एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत शाम है। इस खूबसूरत शाम में अगर आपके साथ कोई खास है तो फिर क्या ही कहना है ना। तो वही यार, अभी एंजॉय करने का वक्त हो चुका है आपका और मैं मिलूंगा आपको कल। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट, शब खैर।

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geet.

0: जब तुम चले गए हो तो फसलें बहार क्या, अरे जब तुम चले गए हो तो फसलें बहार क्या, मौसम बदल गया तेरे किरदार की तरह। मैं समझता हूँ कि मौसम भी इंसान के मिजाज की तरह बदलता रहता है। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँगा कि अगर मौसम आपकी पसंद का है तो आपके मिजाज अच्छे हो जाते हैं, वरना इतने अच्छे नहीं रहते। अगर आपका महबूब, आपका चाहने वाला, आपका संगी साथी अगर आपके साथ है तो हर मौसम खूबसूरत है। हम आपके साथ हैं तो मौसम कितना हसीन है ये देखिए, और साथ साथ अगर आपकी फरमाइशें हमारे साथ हैं तो क्या बात है। वी आर योर होस्ट अफरोज़ जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी, 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: इस पेशकश में दूसरी पायदान पर जो फरमाइश आई है वो है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने, मोहतरमा कंचन लाल जी, और हमेशा की तरह पहला नगमा हमारा ज़्यादातर ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश पर होता है, जैसे अभी आपने इसको सुना। अब आप समाप्त फरमाएँ, देखिए कि ये नगमा कितना प्यारा कहाँ तक बचा के रखा है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने, मोहतरमा कंचन लाल जी ने, एस डी बर्मन की बर्थडे के मौके पर जो अक्टूबर 1 को थी, एंड लता जीज बर्थडे वाओ सितंबर 28 को थी, और साथ साथ महात्मा गांधी की बर्थडे अक्टूबर 2 को थी, और मो हसन की बर्थडे अक्टूबर 2 को थी। तो ये हैं बर्थडेज जिनके लिए ये नगमा पेश किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि होंठों पे छुपा रखी थी सदियों से एक बात, जरा देखें आप शेर, होंठों पे छुपा रखी थी सदियों से एक बात, घबरा के घुटन से मुझे मुंह खोलना पड़ा। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

ठहराज की खूबसूरती खुल जाए एक दिन। ये सच बात है कि अगर राज ना खुले तो वो राज कहाँ रहा, बताइए। अनफॉर्चुनेटली ये सच बात है। ठहराज की खूबसूरती खुल जाए एक दिन, सीने में न कर दफन जिंदा न रहेगा। अभी जो नौमा आपने समाप्त फरमाया, मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम था, होंठों पे ऐसी बात में छुपा। बड़ा अच्छा नगमा था भाई, एस डी बर्मन की मौसीकी। वाह, ज्वेल थीफ 1967 की ये फिल्म है। वाह, भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ में। उस ज़माने में भूपेंद्र को शायद बहुत कम लोग जानते थे, जानते ही नहीं थे बल्कि। मोहतरम जनाब संजीत आर्यन, मोहतरम कंचन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, हसरत जयपुरी का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, फिल्म का नाम भाई भाई, 1970 की फिल्म थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश पर, मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा चैपल हिल में बैठी इंतज़ार कर रही हैं अपने नगमे के लिए। वाह क्या बात है, ये भी बड़ा अच्छा नगमा है, बल्कि नगमा नहीं बल्कि ये गज़ल है, और गज़ल भी ऐसी आपने सुनी है। वाह, मैं तो बस इतना कहूँगा, हर एक बात पे जिद मुझको नहीं आती। अरे हर एक बात पे जिद मुझको नहीं आती है, मगर ये दिल मेरा तेरे लिए जज्बाती है।

0: लहरा के जब तू चलेगी लहराएगी नदी भी, लहरा के जब तू चलेगी लहराएगी नदी भी, और बिना फूल ये तेरे बाल देखकर खिलेंगे बाग भी। बहुत पुराना एक मेरी कविता थी, उसका ये मैंने हिस्सा लिया हुआ है। गुलजार का कलाम था, आर डी बर्मन की मौसीकी, मासूम वाज मेड इन 1983, भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज़ें थीं। हुजूर इस बहुत अच्छा था ना वही, लेकिन मैं आपका मजा नहीं ख़राब करना चाह रहा। मोहसिन साहब एंड सलमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर फरमाइश सर आँखों पर।
1: And Frozji, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And of course, this is Community Calendar, and we will be hosting at UNC Swami Mukundananda Ji, who is touring these days, and he'll be in Chapel Hill on Thursday, October 8th. The event begins at 6:30 p.m. There'll be dinner included, a box dinner, and discourses on stress management and coping with college life, just specifically for students. So we're looking forward to that. And the event with Swami Mukundananda Ji is going to be in Murphy Hall, the big lecture hall in Murphy Hall, right there on the ground floor. So see you there. One more announcement, and that is that Urdu Majlis is going to be happening next Friday, the 9th of October, and it'll start around 7 p.m. with some refreshments, and then go on to discussing the works of Sahir Ludhianvi. And then in the second half, Dusri Nashistme, you can recite your own poetry or your favorite poetry by some of the great poets, or your favorite poetry by somebody unknown who you want us to hear for the first time. So everyone's welcome, free to all. It's in the New West Building on the UNC campus, right on 175 East Cameron Avenue. New West 219 is the room number. See you there. And the NC Dashera Festival, the Ram Leela and the Ravan Dahan will all be taking place on October 24th, 2026. And that will be great. There are garam garam jalebiyan and all kinds of snacks. And then the show, which features episodes from the story of the Ramayana, from Ramji's childhood all the way to the victory in Lanka. You can catch it all at HSNC 309 Aviation Parkway in Morrisville, North Carolina. The Mela starts at 4 p.m., the Ram Leela starts at 5:30 p.m., and the Ravan Dahan will be approximately 8:30 p.m. So come on down and check it out. For more information, you can contact Saroj Sharmaji at 919-656-5224 or Sushma Maheshwari Ji at 919-880-8529.
0: मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की परीक्षा हमारे लिए आई है, इसमें भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से एक हिस्सा कोई अपनी आवाज़ में गाया है और हमसे कहा है कि हम पहचाने ये कौन सी फिल्म का है, बल्कि सुनवाएं ये कौन सी फिल्म का है। तो पहले तो आप ज़रा अपनी आवाज़ हमें सुना दें कि कौन सा नगमा आप चाहती हैं।
2: सारे भेद खुल जाते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक दफ़ा और सुनाएं।
2: सारे भेद खुल जाते।
0: जनाब ठीक है, तो पूर्णिमा जी मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं था। वैसे हो सकता है जान भाई के लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन हम तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खैर, मगर देखिए ऐसा है कि मैं एक शेर सुनाता हूँ और उसे देखें कि क्या उस आपके ख्याल से मिलता है वो जो आप सोच रही थी। नजर मुझसे इतनी चुराता है क्या? अरे नजर मुझसे इतनी चुराता है क्या? चुराने का दिल अब इरादा है क्या?

सुधारो नजर की तुम ही खामियां। आप ये देखिए कि ये अप्रोच मेरी आपको अच्छी लगेगी कि लोग जो हैं औरतों को छुपाते हैं क्योंकि मर्दों की नजरें तेज हैं या गलत हैं। तो इसमें इसमें औरतों का क्या कसूर है? तो सुधारो नजर की तुम ही खामियां। अरे सुधारो नजर की तुम ही खामियां, कहां तक मैं नजरें बचाकर चलूं। हसरत जयपुरी का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, 1962 की ये फिल्म थी दिल तेरा दीवाना है सनम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर परीक्षा सराखों पर चैलेंज के साथ। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी ने एस डी बर्मन एंड लता जी की बर्थडे के मौके पर एक और नगमा हमें याद दिलाया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। जो हम पर तुम्हारी निगाहें जमी हैं, जरा समाप्त फरमाए साहब, जो हम पर तुम्हारी निगाहें जमी हैं, यही तो है ठंडी हवाओं की खूबी।

दिल में खिले हैं गुंचे, इस शेर को समा थमा ये देखिए कितना अच्छा लगेगा अगर आप इसको सुनेंगे। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है आसान जुबान में लिखने की। दिल में खिले हैं गुंचे पहले जो साए थे, अरे दिल में खिले हैं गुंचे पहले जो साए थे, जो बीज की तरह से दिल में दबाए थे। मुनीर न्याजी का कलाम, हसन लतीफ़ की मौसीकी और मैं कह रहा था फिल्म का नाम तेरे शहर में। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, ये नगमा आपने जगा दिया एंड इसका ओकेजन

0: मोहतरम जनाब महमूद साहब की बर्थडे के मौके पर जो सितंबर 30 को मनाई गई, और मैं कहूंगा कि बुलबुल के गुलिस्तान में जो ये राग पड़े हैं, अरे बुलबुल के गुलिस्तान में जो ये राग पड़े हैं, मौसम के जागने से सभी जाग पड़े हैं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं, और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oakland, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
2: तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना होगा शायद। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। वी आर योर होस्ट अफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि त्रिगुड़ी, और साथ में ये भी कहता चलूं 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं इतवार के दिन।
3: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार ऑन रेडियो नायरा 101.9 एफएम विद न्यू डबल ब्रॉडकास्टिंग पावर, आल्सो 99.9 एचडी4 एंड 1490 एएम रॉली डरहम।
4: एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द रेडियो नायरा ऐप सो यू कैन लिसन टू गीत बाजार एंड ऑल ऑफ रेडियो नायरा'स वंडरफुल देसी प्रोग्रामिंग इजीली एंड फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर फोन एंड अदर डिवाइसेस। द रेडियो नायरा ऐप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऐप स्टोर एंड द गूगल प्ले स्टोर, सो इट्स रियली इजी, जस्ट डाउनलोड इट एंड स्टार्ट लिसनिंग।
2: खातिनो हजरात, जहां छुपाने की बात होती है वहाँ शायरी की बात होती है, और जहाँ शायरी की बात होती है वहाँ मोहब्बत की बात होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप किसी बात को छुपाएं, बल्कि जो राज आप छुपाएं तब उसका और मज़ा है, और राज खोल दें उसका अपनी जगह मज़ा है। लेकिन बस यही है कि मोहब्बत करने में वो मज़ा नहीं जो मोहब्बत छुपाने में है। आप देखें कितनी बातें कही गई हैं शायरी में, बॉलीवुड में और लॉलीवुड में इतना कहा गया है छुपाना बताना बताना छुपाना। देखते हैं कि कैसे कैसे मज़ेदार जो अनुरोध आए हैं, जो फरमाइशें आई हैं। देखिए जैसे कि ये पहली फरमाइश राजकुमार सिन्हा की मेरठ से, यानी सरधना से, तो वो आप समाप्त फरमाएं। मुँह छुपा के तो सभी लोग जिया करते हैं, सच बात है कि मुंह छुपा के तो सभी लोग जिया करते हैं, और मुंह दिखा के जीना कोई आसान नहीं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

छुपा छुपा के न रखो जहां की नजरों से। आपको मजा आएगा इस शेर में, और जान भाई आप भी सुने कि छुपा छुपा के न रखो जहां की नजरों से। ये हुस्न है अजी, चोरी की कोई चीज नहीं।

छुप छुप के जा रहे थे, जाना था बता देते। अरे छुप छुप के जा रहे थे, जाना था बता देते, लेकिन कहाँ छुपोगे इसका तो पता देते।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का।

0: चांद नहीं देखना सूरत मेरी परी की। समातरमाएं कि ए चांद नहीं देखना, ए चांद नहीं देखना सूरत मेरी परी की, करना न फिर शिकायत एहसास से कम तरीकी।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

आंख मिचोली चंदा खेले, खेले बस बादल के संग। अरे आंख मिचोली चंदा खेले और खेले बस बादल के संग। मेरे संग वो नहीं खेलता, क्यों खेले पागल के संग।

धोबी नदी किनारे पर कपड़े दाग छुड़ाए। अरे धोबी नदी किनारे पर कपड़े दाग छुड़ाए, और मेरी आत्मा दाग छुड़ाए, जो मांगे सुपाए।

0: दाग
1: बचा के सबकी आंखों से ये क्या तुम लेके आए हो। समाज फरमाए के बचा के सबकी आंखों से ये क्या तुम लेके आए हो, बता देते पता लगता कि अपने या पर आए हो।

दिल ले गया, जान ले गया, अरमान ले गया। हाय हाय, दिल ले गया, जान ले गया, अरमान ले गया, बर्बादियों का सारा सामान ले गया। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

मेरे जज्बात का तूफान न पूछो हमसे, मेरे जज्बात का तूफान न पूछो हमसे, बड़े मजबूत सफीने को चलाना होगा।

दिल में तूफान उठाओ तुम्हें इजाजत है। अरे दिल में तूफान उठाओ तुम्हें इजाजत है, मगर फिर खुद को छुपाना मुझे बर्दाश्त नहीं।

0: ऐसी खेली आंख मिचोली अपनी माँ से बचपन में, अरे ऐसी खेली आंख मिचोली अपनी माँ से बचपन में, अब तक उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ छुपी जो आई ना।
1: You are listening to Geet Bazaar.

दीपक छुपा के रखना दिल में नहीं तुम अपने, अरे दीपक छुपा के रखना दिल में नहीं तुम अपने, ऐसा ना हो कि जलकर तेरा दिल कोई जला दे।

0: कहने को चांद कहता है पर्दा नहीं करते। वैसे हकीकत भी है कि चांद तो ऐसे ही अपना चेहरा दिखाता है। कहने को चांद कहता है पर्दा नहीं करते, और बादल अगर आ जाए तो झगड़ा नहीं करते।
1: You are listening to Geet Bazaar.

दुनिया को चलाता है, छुप छुप के जलाता है। समाप्त फरमाइए, अच्छा लगेगा शेर आपको वैसे ये कि दुनिया को चलाता है और छुप छुप के जलाता है, चेहरा वो छुपाता है, ऐसा भी क्या नाता है। छुपने

पर्दा जो रुखे ताबा से उठे, दीवानों में हलचल मच जाए। समाज फरमाए कितना जोशीला शेर लिखा, पर्दा जो रुखे ताबा से उठे, दीवानों में हलचल मच जाए, और एक शम्मा हो रोशन और जैसे परवानों में हलचल मच जाए। कोई इसमें शक नहीं, और जब शमा बुझ जाती है तब भी परवानों में हलचल हो जाती है, जलने के अलावा भी हलचल मच जाती है वक्त के साथ साथ। जैसे अब महफिल के ख़त्म होने का वक्त आ गया है और दिल में हलचल मची हुई है, 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए चलते चलते। मोहतरम जनाब दामोदर पांडे साहब की रामनगर बनारस से जो फरमाइश आई है सुनवाते जाएं। We are your host, Afrostar, John Caldwell and Ravi Tirukuri. 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। This is Geek Bazaar Radio, Naira की पेशकश। अगले हफ्ते मिलेंगे। ये सच कहता हूँ कि मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना आपकी मोहब्बत में। अगले हफ्ते तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग कहते हैं ये शायरों की बातें हैं, वैसे हकीकत भी है, लेकिन शायरों की बातें कुछ इस तरह से हैं। अब ज़रा मेरा शेर गौर फरमाएं तो पता लगेगा कि परहेज नहीं करता मैं सच को बताने से। समझिए कि मज़ा आएगा और अगले गाने से कैसा आप जोड़ेंगे इसको। परहेज नहीं करता मैं सच को बताने से, क्या रात भी हुई है काजल के लगाने से। मोहब्बत जिंदाबाद।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: दो छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तो जो भी कहेगी सब कराएंगे मम्मी।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ।
3: रे इतनी जल्दी भूल गई?
4: यो के बात कर रहा है महावीर? छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Radio Naira par aap sun rahe hain Gitanjali.
3: Radha Krishna, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं Tata Product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोका.

0: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए,
1: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का गुदड़ी का लाल,
2: फोन लगा के पबी।

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने के सीधा जगह दाई गुरु, दाईने के सीधा जगह दाई, मायने के सीधा जगह दाई गुरु, दाईने के सीधा जगह दाई, फिर थोड़ा आगे मायने के दाईने के सीधा जगह दाईने के दाई।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन, मायने के सीधा जगह दाई गुरु, दाईने के सीधा जगह दाई, फिर थोड़ा आगे मायने के दाईने के सीधा जगह दाईने के दाईने के मायने के दाई।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं ना? Tata Broadcast. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

तुम्हें लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस हैं। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

दिखती हैं ईंटें, देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस।

लाना तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रहा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हाँ, ये कचिमणा चिवा चिवला माझा साजण जागा झाला हो सूर्य उगवला, ये कचिमणा चिवा चिवला।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: पुतनी का भागने न पाए।

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: इधर है, इधर है।
2: सुन, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, फिर थोड़ा अभी मायने के दाई ने किसी बजे के दाई ने किसी दाई।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
2: फिर से सुन, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, फिर थोड़ा आगे मायने के दाई ने किसी बजे के दाई ने किसी दाई ने के मायने के दाई।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490

अगर आप ज्वेलरी शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Rally Trunk Show आ रहा है 17th और 18th of October को Courtyard by Marriott Raleigh Cary में सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक। और सबसे खास बात, यहाँ आप enjoy कर सकते हैं gold और diamond jewelry की value पर making charges में up to 25% off। तो अपनी favorite jewelry choose कीजिए और इस special offer का फायदा उठाइए। Marked dates 17th and 18th of October, Courtyard by Marriott Raleigh Cary, Raleigh Trunk Show, because every occasion deserves a little more sparkle. And now you enjoy all the upcoming songs only on Naira.

0: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Meet on the mic, writing what I feel.
1: From Salman Khan praising pilot Smith Machar to Nusrat Bharucha's spinal fracture treatment, here's what trending today in B-Town. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Salman Khan salutes Captain Smith Machar after he helped save 174 lives. उन्होंने कहा कमाल कर दिया है पायलट जी. नुसरत भारूचा टू बी एयरलिफ्टेड टू मुंबई फॉलोइंग स्पाइनल फ्रैक्चर ड्यूरिंग बाली ट्रिप. आई होप शी गेट्स वेल सून. स्वरा भास्कर रिकॉल्स डायरेक्टर्स अनकंफर्टेबल बिहेवियर ड्यूरिंग अलिया करियर, सेज ही आस्क्ड फॉर अ हग. फातिमा सना से कॉल्स विजय वर्मा इनक्रेडिबल, ओपन्स अप अबाउट देयर क्लोज फ्रेंडशिप. डीनो मोरेरा अरेस्टेड आफ्टर 8 hour EOW क्वेश्चनिंग इन मीथी रिवर केस. अमिताभ बच्चन स्टेप्स आउट डेज आफ्टर नी इंजरी, फैंस प्रेजेस हिज डेडिकेशन. अभिषेक बच्चन सेज ही'd लव टू डू कजरारी 2.0. ऐश्वर्या एंड अमिताभ ऑन बोर्ड. विकी कौशल सेज सीइंग कैटरीना कैफ्स हैप्पीनेस विद सन विहान मेक्स हिम वांट टू पॉज टाइम. दिस फैमिली इज सो क्यूट यार. वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.

मजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। सात से दस में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी ये इवनिंग? इवनिंग तो काफी अच्छी है क्योंकि मौसम जो है वो काफी अच्छा खुशनुमा हो रखा है एंड हवाएं जो है वो काफी ठंडी ठंडी चलने लगी है हवाएं, ऐसे लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये मौसम ऐसा ही रहेगा क्योंकि यार बड़ा तरसाया है गर्मी के मौसम ने और उमस भरे मौसम में। तो यही है कि इट्स लाइक इस प्यारे सुहावने मौसम में एक कप अदरक की चाय मिल जाए, और आज तो पता नहीं क्यों लेकिन मैगी खाने का मेरा मन बड़ा हो रहा है। मैगी मिल जाए, एकदम ऐसी लाइक देसी मैगी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। इन्जॉय करते हैं इस शाम का पहला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे रेडियो नारा पनीर मदन नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि मैं आपको कुछ लोकल खबरों के बारे में जानकारी दूं। तो पहली खबर यह है कि कॉलर ऊपर कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्यारा ट्रायंगल एरिया पूरे अमेरिका में अपना जलवा बिखेर रहा है। हाल ही में आई निश और यूएस न्यूज की नई रिपोर्ट में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहरों की लिस्ट जो है वो आई है, और आपको जानकर गर्व होगा कि रैली को नॉर्थ कैरोलिना का सबसे बेस्टेस्ट शहर जो है वो चुना गया है, और हमारा डरहम बिल्कुल पीछे नहीं है, वो दो नंबर पर है। दोनों को ए ग्रेड मिला है। यहाँ के बेहतरीन स्कूल, शानदार पार्क, देन डाइवर्सिटी और कमाल की नाइट लाइफ इसे नंबर एक बनाती है। यही नहीं, एक और नई लिस्ट जो आई है वो डरहम को पूरे देश में दूसरे नंबर पर रैली और आठवें नंबर पर जो है वो रैली को रखा है। यानी हमारा ट्रायंगल सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी सबसे सुरक्षित और खुशहाल जगह है, और एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

चलिए अब बात करते हैं आपके वीकेंड के प्लान की। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर लेटेस्ट होम डिजाइंस और नई टेक्नोलॉजी को देखना पसंद करते हैं तो आपका फेवरेट इवेंट जो है वापस आ गया है। इस पूरे हफ्ते और आने वाले वीकेंड्स पर पूरे ट्रायंगल एरिया में 2026 ट्रायंगल परेड ऑफ होम्स शुरू हो चुका है। इसे नॉर्थ कैरोलिना का सबसे बड़ा ओपन हाउस कहा जाता है, जहां 300 से भी ज्यादा नए और खूबसूरत घरों को आम जनता को देखने के लिए खोला गया है। अभी जान लेते हैं कि क्या फीस रहने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाली है और किस तरह से आप नए नए घरों को देख सकते हैं, जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन इस गाने के बाद। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना पर निर्मला नाइट्स। एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। और हम बात कर रहे थे ट्रायंगल परेड ऑफ होम्स, जहां जाने के लिए एंट्रेंस कैसा रहेगा, आपको क्या एंट्री फीस देनी होगी। तो बताना चाहूँगा कि इसमें जाने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्री फ्री फ्री है। आप रैली, दरम, वेक या चैपल हिल कहीं भी अपने परिवार को साथ लेकर जा सकते हैं और नए नए इंटीरियर डिज़ाइंस की आइडिया ले सकते हैं। तो भाई इस वीकेंड पर सोफे से उठिए, परिवार को गाड़ी में बिठाइए और निकल पड़िए खूबसूरत घरों की सैर पर। क्या पता आपको आपके सपनों का आशियाना यही मिल जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन रिवना नाइट्स, और मैं ये कह रहा था कि अरे भाई, भले ही अभी अक्टूबर की शुरुआत हुई है लेकिन हमारे शहर रैली में क्रिसमस की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई है। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी पुलेन पार्क का सबसे पॉपुलर इवेंट हॉलीडे एक्सप्रेस वापस आ रहा है, और खुशखबरी यह है कि इसकी टिकटों की सेल इसी महीने 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इस इवेंट में पूरा पार्क लाखों खूबसूरत लाइट से जगमगा उठता है, बच्चों के लिए छोटी ट्रेन चलती है और सांता क्लॉज खुद सबसे मिलने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कैसा है, मतलब कैसा रहेगा प्रोसेस, क्या करना होगा, आपको बताऊंगा आपको ज़रूर, लेकिन इस गाने के बाद। तब तक बने रहेगा रेडियो नायरा पर, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।